मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जदे पढ़ू था दरू सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त।

आशिक बैठे हैं, तेरे अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं नहीं जानता किधर है। सारे ही महफिल वाले, हाँ ये जितने स्टेज पे बैठे हैं, इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाथर में बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद, हैदर बरगा सकीन कोई देखी।

0: बस बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार, ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
4: छा पंहिंजे कारोबार
5: GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं 3FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो 3FM 90.4।

ताई हम लास्ट एंड काम चाहे वाद कार्रवाई साइप्रस जे जहाज से पासरान इनकलाब जे हमले जे रद्द अमल में कई वही ईरानी हमले सबब साइप्रस जो जहाज सफर जारी रखने जे काबिल न रहे है ईरान के मौके डिनो पे हो तो पंजे रवैये के बेहतर बनाए एहतजारती जहाजन के हमलन का मफामत की यादाश्त एमओयू ते अमल करे पर ईरान एक भेरो बीहर ये करण में नाकाम थो है।

0: सांगड़ जे जेंदो में 2800 एकड़ खां वधीक सरकारी जमीन पास माण्हुनि खे अलर्ट करण खिलाफ़ घुर्जमात जे समय माण्हुनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। होरन जे रुहानी पेशवा पीर पकार जे नोटिस वठण बाद घुर्जमात जे चइनि ख़लीफ़नि जे अॻुवाणी में सवें माण्हुनि ते जेंदो में एहतजाज कयो। अॻुवाणी जो थी घुर्जमात जो इलाइक़ो आहे तव्हां जे माण्हू मुल्क जी आज़ादी लाइ क़ुर्बानी ॾिनियूं। सिंध हुकूमत असल अक़दारनि खे दरपदर करे उहे ज़मीनूं पासर माण्हुनि खे अलर्ट कयूं आहिनि। अलर्टमेंट रद्द न कई वई त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। गुलशन अदीब में दुकान मां लखे रुपयनि जो धाड़ो सीसीटीवी फुटेज साम्हूं अची विया। चयनि हथियार बननि दुकान मालिक पप्पन कुमार खे यरगमाल बणाए 60 खां 70 लख रुपयनि जी माल जा मोबाइल फोन रोॻ रक़म खणी फरार। सीसीटीवी फुटेज में ॾिसी सघिजे थो त ॿिनि मोटरसाइकिलनि ते सवार 4 हथियारबंद दुकान में दाख़िल थियनि था। हथियारबंद दुकान मालिक यरगमाल बणाए लखे रुपयनि जे माल जा मोबाइल फोन रोक रखिया। दुकान वारा स्टील टाउन थाणे ते आबदार गिरफ़्तार।
1: सोलह साथ जिंदगी भर का।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252586।
3: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अक्षयपुर में बीएसपी डर के गुजरियल डी का लगल खारो बंद न थियो। गोठानन जो एहतजाज गोठानन जो है खारे सबब पानी आबादी ना वतन लगो है। खारो लगंदे ही 48 कलाक थी वेन पंजन तई खारो बंद न कयो वियो है। नोटिस वठी बीएसपी डर के लगल खारो फौरी तौर से बंद कयो वञे। घोड़ाबारी भरसा टैंकर रक्षा के टक्कर में एक जो फोत घोट ओभायो जत में हादसे सबब हाजी जत फोत थी पो ला जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ बुड़ी 3315257786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: वाइट एट ब्यूटी क्रीम फाइव डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एट ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एट ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छा पंहिंजे कारोबार तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बतीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 3135525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

मैं आपको बताने लगी थी कि यार जो मेरा सवाल तो इतना आसान था और लेकिन आपने जो है ना अभी तक मुझे मेरा जवाब नहीं दिया. तो जिसे मेरा सवाल नहीं सुना, जिसे मुझे अभी ज्वाइन किया है, उसके लिए मैं अपना सवाल रिपीट कर रही हूँ. देन मैं अपना फिर ये बता दूँ कि कौन हमारे साथ मौजूद है और कौन नहीं है. तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेरा सवाल था, सवाल मेरा ये था कि आप लोगों ने बताना है कि भाई वो क्या है जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है और लेकिन फिर भी मगर दोनों एक साथ रहते हैं. तो जी पता लगा है और मुझे जल्दी से बताएं. जब तक हम यहाँ देख लेते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है. हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से, एक 888 पे SMS करते हुए कहते हैं मीरपुर खास से. ओके जी मीरपुर खास से तो हैं भाई. आपका नाम क्या है या सिस्टर आपका नाम क्या है, मुझे जरूर बताया करें ताकि मुझे और सुनने वालों को पता चल सके कि मेरे साथ कौन कौन मौजूद हैं. और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शक्कर के लिए कहते हैं कराची से मसरूर अहमद आरजे सना जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? माशाल्लाह वीआईपी, खूबसूरत शो एंड खूबसूरत आवाज अंदाज, बहुत खुशी हुई आपको लाइव सुनकर. मुझे माय फेवरेट प्रोग्राम आओ बात करें. थैंक यू सो मच. माय फेवरेट मतलब आपका योर फेवरेट प्रोग्राम बन गया है आओ बात करें. जो कि आप मुझे हमेशा से टाइमली ज्वाइन करते हैं जी, बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुई कि ये सुनकर. तो ऐसे ही आप मुझे टाइमली ज्वाइन करते रहना हर वीकेंड, ओनली संडे जो कि रहता है मेरा और आपका साथ आओ बात करें मैं पूरे 2 घंटे के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक. तो जी मेरा सवाल का जवाब दीजिए मसरूर अहमद और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए. फैजा अली की आवाज में हम सॉन्ग प्ले कर ही चुके हैं और इसके अलावा कोई अगर फेवरेट सॉन्ग हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं ताकि जो है ना ताकि हम आपका फैमिली सॉन्ग प्ले कर सकें. ओके जी 10 मिनट रिमेनिंग है आप लोगों के पास. और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शक्कर के लिए कहते हैं कि सलाम सना कैसी हो, शो नाइस, आप नाइस, आई मिस यू. ओहो मिस यू, आपने मुझे मिस भी करना शुरू कर दिया. अच्छा जी. और कहते हैं कि आपका वेट होता है दिल से दिल तक. आई एम वसीम. कैसे हैं आप वसीम और कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है, आप तो लिखना भूल गए हैं. तो ये अगर शक्कर सही है तो जी कैसे हैं आप और अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है. और इसके अलावा मुझे ऐसे ज्वाइन करते रहिएगा और मेरे सवाल का जवाब मुझे टाइमली दे दें. और इसके अलावा हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, पिछली बार मैंने आपको सॉन्ग की गुजारिश की थी शहबाज जमाली नवाब शाह जी, आपने मुझे की थी या की हो? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये तो पता है कि

हम लोग कर रहे होते हैं। तो जी बहुत अच्छा लगा कि बावल नगर से यार आपने मुझे ज्वाइन किया है, सनाटका से विलेज आपका है और आपने मुझे वहां से ज्वाइन किया। ऐसे ही आपने मुझे हर संडे ज्वाइन करते रहना, आज से मुझे आपको रहेगा इंतजार। और इफ्तिखार अहमद अलसर दुआ कि आप भी हमेशा खुश रहें और मेरा प्रोग्राम सुनते रहें। अच्छा मेरा जो सवाल, अगर आपने नहीं सुना सवाल मेरा, ये आपसे रिपीट कर देती हूँ, देन आपने मुझे 12 बजे के बाद 10 मिनट तक आपने मुझे इसका जवाब दे देना है सबने। तो जी सवाल मेरा ये कि आपने मुझे बताना है कि वो क्या है जब एक चलता है तो एक रुक जाता है मगर फिर भी दोनों एक साथ रहते हैं। तो जी आपने पता लगाया और मुझे बताया इफ्तिखार अहमद, मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपका वेट। और अपने पसंदीदा कोई भी सॉन्ग का नाम जरूर साथ में बताइएगा, क्योंकि अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम आपका शो का जो ये सॉन्ग होगा आपको कमेंट वाला, ये हम जरूर प्ले करेंगे। देन अगर आपका नहीं भी ठीक होगा कोई बात नहीं, हम आपका सॉन्ग वैसे ही प्ले कर देंगे। आप फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। तो जी ऐसे ही इफ्तिखार अहमद यहाँ पर कर रहे हैं हम आपका वेट और देखते हैं इसके अलावा हमारे साथ और कौन मौजूद।

अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं अभी तो, और जो हमारे साथ मौजूद हैं देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शक्कर के लिए कहते हैं मसरूर अहमद आरती सानी जी, सवाल का जवाब है। अच्छा जी, आपने जवाब तो दे दिया है मसरूर अहमद, तो कोई सॉन्ग का नाम भी तो बताएं भाई, अगर जवाब ठीक है तो बंदा क्या करे, कैसे बताए आपको, सॉन्ग का नाम बताएं ताकि मैं आपका यहाँ पर सॉन्ग कर सकूं प्ले। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद है जलोरी से खालिक लशारी, कहते हैं जवाब है। अच्छा जी, गाना फरजाना परवीन मुझी हत जुरुमार, ओके जी, आपने गाना भी बताया है, जवाब भी बताया है, ठीक है जलोरी खालिक लशारी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है। और जी, अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है लड़काना से, कहते हैं कि अली मदद सदा

आएगा संडे और आपका शो, मेरी कम्प्लीट फैमिली आपका शो शौक से सुनते हैं. कम्प्लीट फैमिली जो है मेरा शो शौक से सुनते हैं. थैंक यू सो मच और सबको मेरा सलाम कहिएगा और सबको मेरी तरफ से दुआ भी मौजूद हो. मतलब मैं सबके दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप आपकी फैमिली को आप सबको बहुत खुश रखे. ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हर संडे संडे और मुझसे बात करती रहनी है. कोई भी फैमिली की सारी बातें जमा कर लिया करें आप लोग सारे फैमिली मेम्बर्स और मुझसे संडे वाले दिन सारी बातें किया करें. और कोई पसंदीदा सॉन्ग भी बताएं, मेरे सवाल का जवाब भी जरूर दें ताकि यहाँ पर हम आपके पसंद का सॉन्ग भी प्ले करें देन आपका जवाब भी देखें. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ मौजूद होते हैं सदाकत हुसैन. ऐसे ही आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना अपने फैमिली के साथ और मजे मजे के सॉन्ग को एंजॉय करते रहना. ब्रेक की तरफ जाने का अभी हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की तरफ लेकिन वापस आएंगे. वापस आते ही हम करेंगे बाकी की बातें क्योंकि हमने करनी है और बात करने में बहुत सारी बातें. तो जी मैं आपको बताऊं कि जब तक आप मेरे सवाल को सुने देखें दिमाग को थोड़ा सा चलाएं और कोई परेशानी की कोई जरूरत नहीं है. और सवाल अगर आप लोगों ने मेरा नहीं सुना है तो सवाल मेरा ये है कि आपने मुझे जस्ट ये बताना था जी, आपने मुझे सिर्फ इतना सा जुमला बताना है कि भाई वो क्या है जब एक चलता है तो एक रुक जाता है मगर फिर भी दोनों एक साथ रहते हैं. कोई मुश्किल नहीं है, पता लगाएं और जल्दी से मुझे बता दें 12 बजे के 10 मिनट तक. मतलब 12 बजने के बाद 10 मिनट तक आपको और टाइम दे दिया है तो आपने मुझे बताना. उसके बाद हमने करना है क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग्स प्ले क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं. तो जी टाइमली हर चीज हमें प्ले करनी होती है. तो जी यहाँ पर चलते हैं एक न्यूज ब्रेक की तरफ जाने पर वापस आएंगे. वापस आके करते हैं बाकी की बातें. ओके रखिएगा अपना बहुत सारा, रहिएगा मेरे साथ क्योंकि न्यूज का पता होना लाजमी है.

0: 88
1: सखर की आवाज। अब आप सुनेंगे
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: Fakir. हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

ईरान ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाइयूं जारी आहिनि। खिते में मौजूद अमरीकी फौजियुनि ते हमला, बाज़ार इनकलाब पारां उहिदनि जे प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खे तबाह करण जी दावा। बहरीन ऐं कतर जी राजधानी में ॿ धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। बाज़ार इनकलाब दावा कई त ओमान जे तकम बंदरगाह ते अमरीकी लॉजिस्टिक ऐं तेल फराहम कंदड़ मर्कज़नि खे निशानो बणायो आहे। यूएई जे दिफ़ाई वारे वज़ीर चयो आहे त मुल्क जो दिफ़ाई निज़ाम ईरान तर्फ़ा ईंदड़ मिज़ाइल ऐं ड्रोन्स जो मुक़ाबिलो करे रहियो आहे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते बिना में चयो आहे त ईरान गलत फैसलो कयो, हाणे कीअं क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेनकाम जो पैगाम बि शेयर कयो।

चयो हो त वाइदो पूरो कयो या वाइदे जी भंकड़ी जी क़ीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीबाफ चयो आहे त हिकु तरफ़ वाइदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे, पंहिंजा कयल वाइदा पूरा कयो या वाइदनि जी भंकड़ी जी क़ीमत अदा कयो, हक़ीक़त अव्हां जे साम्हूं आहे।

बख्शापुर में बी हॉस्पिटल के गुजरियल डी का लगल घारो बंद न थो गुठण जो एहतजाज गुठण चवण आए तो घारे सब पानी आबादी डां वधन लगो है घारो लगंदे 48 कलाक थी वह पर जैं घारो बंद न कर वो है नोटिस वी बी हॉस्पिटल के लगल घारो फौरी तौर से बंद कर वे।

0: सखर में मारन जतोई खुनी तकरार जरगे जी फतवाज बुधाई वेंदी। सर्किट हाउस सखर में सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम। पुलिस की वही नफरी मुकरर। बिन्हीं धुरन जहां मानू चंगा मुड़ सर्किट हाउस पहुंचने शुरू थी पाया। अलीगढ़ खान बहर और इब्राहिम खान जतोई की अगवाणी में फतवा बुधाई वेंदी। टिन मकसदन बाबत एतराज सबब मुलतवी थियल फतवा जारी थियण जो इम्कान है। मर जतोई तकरार में हेल तई पंजवंजाह इंसानी जानू जया थी चुकी। मेड़ में अगवा थियल छह साल बाड़ी उजाला परवीन सोलंगी के 99 ॾींहं गुज़रण बावजूद बाज़ियाब न थी। SSP दादू जा वायदा वफ़ा न थिया। पुलिस मुकमल तौर ते माठ अख़्तियार करे वरती। पुलिस कख पंहिंजी बीड़ो न कयो। वापसनि जो मासूम ॿारनि शहरनि समेत एहतजाज। बाड़ी खे फौरी तौर ते बाज़ियाब करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.2।

0: सो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि अभी यार हो रहे हैं अभी पूरे सवा बारह, और सवा बारह आपको पता है कि अभी हमारे टाइम बिल्कुल ही कम रह गया है, क्योंकि यार दो घंटे तो हमारे पता ही नहीं चल रहे होते हैं कि कहाँ चले गए कहाँ नहीं।
1: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

तो ऐसे ही है। तो जी यहाँ पर मैं अब आपको बताती चलूँ कि भाई जो मेरा सवाल था, सवाल को हो गया है बहुत सारा टाइम, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। तो जी देख लेते हैं पहले कि हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल लशारी, कहते हैं विले सोनू खान लशारी मीरपुर से इज लिसनिंग स्पेशली बाजीसना इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन। ओके जी, और अच्छा आपने मुझे कमेंट कर दिया जवाब, लेकिन आपने मुझे एक सॉन्ग नहीं भेजा। अगर आपको पता लगाना हो कि यार आपका जवाब ठीक है या रॉन्ग है, गलत है या सही है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ मुझे पसंदीदा सॉन्ग जरूर लाजमी भेजा करें। और अच्छा लगा कि आपने मुझे कमेंट किया है, मुझे ज्वाइन किया, एक बार लशारी ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हर संडे संडे। और बात करें मैं रहता है जैसा कि आपके और मेरे साथ पूरे दो घंटे के लिए, तो ऐसे आपने हमेशा से मुझे ज्वाइन करते रहना है। और अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे कोई आंसर बता देंगे तो जरूर बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है, मेरा नाम सन्ना है, क्या क्या नाम आप मुझे लेके बता रहे हैं।

very good. I listen to the show with great. Okay. कैसे हैं आप? नूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं. कहते हैं नूर हुसैन टोनियो फ्रॉम लाड़काना, योर शो इज ग्रेट. थैंक यू सो मच नूर हुसैन टोनियो, और ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया कि आप बहुत टाइम बाद आप मेरे साथ शो में मौजूद हुए वापस, बहुत अच्छा लगा. और उसके अलावा मसूर अहमद हमें कहते हैं सना जी प्लीज लिसन टू द ओएसटी सॉन्ग ऑन योर फेवरेट. ओके जी, लास्ट में अपने पसंदीदा ओएसटी सॉन्ग प्ले करती जाऊंगी जो आप सब सुनेंगे. मेरी तरफ से डेडिकेट होगा मसूर अहमद को, और स्टेप इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके ठीक है, ठीक है जी, जरूर ऐसे ही करते हैं. और इसके अलावा जो हमारे पास फरमाइशी सॉन्ग था वो भी जरूर प्ले करेंगे, जो हमें शहबाज ने कहा था कि सॉन्ग ये है कि जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से जी भर गया. मैंने आपको उस दिन भी ये बात कही थी कि यार ऐसे सेट से सॉन्ग खुद भी ना सुने और हमें भी ना सुनाए, जिंदगी बहुत अच्छी है, ये हमने अपने आप को खुद मजबूर किया हुआ है परेशान रहने पर. तो ऐसा ही है. और उसके अलावा देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है. हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं

हाँ ठीक है आवाज से भी हो जाता है, लेकिन मुझे गुस्सा ही बहुत आता है भाई। अगर किसी दिन अगर गुस्सा आ गया तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे कोई प्यार नहीं हुआ। ऐसे ही है ना जी। तो और उसके अलावा नहीं नहीं अच्छे अच्छी बात है, हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शक्कर से आपने है कहते हैं कि दिंगान पर गड़ी से अजीज सोलंगी, ये कौन सी जगह बताइए मुझे नहीं पता। अजीज सोलंगी जवाब है और गाना फौजिया सुमरो टोक्यो सारन लाजानी मुके जमाना। ओके जी जरूर, जरूर।

ऐसे ही आप लोग मिले संडे संडे, और जैसा कि मैं कर रही होती हूँ आपका वेट, और ऐसे ही है आज भी। तो चले ठीक है, आज हम सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, शबा सोलंकी का सॉन्ग प्ले करेंगे क्योंकि फरमाइशी सॉन्ग है, दो दफा हमें ये कहा गया है। ओके जी, तो करते हैं ये सॉन्ग प्ले, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, रहिएगा मेरे साथ, करते हैं सॉन्ग एंजॉय।

यहाँ पर हम लोग एक फरमाइशी सॉन्ग के जिंदगी देने वाले तेरी दुनिया से दिल भर गया, तो ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था सैड सॉन्ग नहीं सुना करें भाई, और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने खुद अपने जो है ना इस तरीके से खुद मतलब कहते हैं ना जीना हराम क्या हुआ, हमने खुद किया हुआ होता है मतलब ज्यादा उम्मीदें लगाकर ज्यादा शौक पालकर, तो ये चीजें होती हैं। बाकी अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है बहुत खूबसूरत है, तो ये एक ही दफा मिलती है जिंदगी, तो आपने इसको हर रोज एक नई जिंदगी के साथ एक नई खुशी के साथ जीना होता है। तो जी यहाँ पर इसके अलावा और भी हमारे पास फरमाइशी सॉन्ग्स हैं जो कि हम प्ले करेंगे, बल्कि हम प्ले करते हैं अभी।

आपको पता है कि भाई जो हम लोगों को राइट आंसर दे रहे होते हैं, जैसे अजीज सोलंगी ने एक फरमाइश की हमें एक सॉन्ग की, फजल सुन लोगे इस सॉन्ग तो जरूर हम प्ले करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करेंगे क्योंकि जो सेट सॉन्ग होते हैं हम वो थोड़े से ही प्ले कर पाते हैं। तो जी आपने ऐसे सॉन्ग बताने होते हैं जो उधम वाले हों, दिन के हिसाब से हों, आपको रुलाते हुए को हंसा दें, ऐसे सॉन्ग बताया करें, बाकी अब हंसा हुआ बंदा भी ना रोए ना, ऐसे सॉन्ग ना बताया करें। ओके तो करते हैं इस सॉन्ग को प्ले, थोड़ा सा इस सॉन्ग को भी सुन लेते हैं। रहेगा मेरे साथ कर दिया इस सॉन्ग को मैंने प्ले।

तो यार यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं, अभी हम किसका प्ले करें किसका प्ले करें, टाइम देखा तो यार सिर्फ 2-3 मिनट मतलब हमारे पास एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने के लिए रह गए थे, और उसके अलावा हम देखते हैं तो सिर्फ 15 मिनट हमारे पास मौजूद है, 15 मिनट में हमें बहुत सारे सॉन्ग प्ले करने हैं जो कि मैंने अपने लास्ट में प्ले करना है, और उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो के प्ले करने हैं हमने। तो क्यों ना मैंने सोचा कि यार आप लोगों से ये पूछा जाए कि अब आप लोगों ने मुझे पहले ये बताने कि आज के आपकी एक्टिविटी क्या होने वाली है, क्योंकि अब आपने मुझे ये बताना है कि मेरे शो के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, या कोई जब मेरे पास आप लोग सुन रहे होते हैं तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सॉन्ग आपके जहन में आ रहे होते हैं, तो आप लोग भी ये सोचते होंगे ना यार कि हमने ये सॉन्ग क्यों नहीं बताया, वो सॉन्ग क्यों नहीं बताया, तो इसलिए बोलती हूँ आप लोग मुझे टाइमली सॉन्ग बता दिया करें ताकि बाद में डीग्रेड आपको ना हो। तो जी ऐसा ही है, तो आपने क्या करना है अभी, आपने सबसे पहले उठ के मुझे ये बताना है कि आपकी आपकी एक्टिविटी क्या होने वाली है, देन मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया वापस छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं एक और सॉन्ग प्ले, जब तक आप सोचेंगे वो सॉन्ग कौन सा हो सकता है, और आपका मोस्ट फेवरेट ड्रामा रह चुका है वो उसका उस चीज सॉन्ग है, इतना मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग जाएं ध्यान लगाएं, जब तक यहाँ पर हम लोग चलते हैं छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, रहेगा मेरे साथ।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

कारवाइन में अज वधीक एकवीह खाजन के जनम भेड़ो कयो वयो। जबलन में लिकल दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कारवाई कई पई वन। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शोबान ए बियन कारवाइन में 102 दहशतगर्द मार चुका। घर वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेज के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो त मुल्क में लिकल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो।

सिंध में दहशतगर्दनि ॾोहारियुनि अंसरनि ऐं संदनि सहूलतकारनि ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस ते ॿधल टारगेट ऑपरेशन तेज़ करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह सूबे में अमन अमान बरक़रार रखण लाइ इदारनि खे फ्री हैंड ॾेई छॾियो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिक्योरिटी सूरताल जो जाइज़ो वठण लाइ आला सतही इजलास। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स आईजी सिंध ऐं ॿियनि लाॻापियल कानून लागू कंदड़ इदारनि जी सरबराहनि जी शिरकत। मौजूदा सिक्योरिटी सूरताल, दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ जारी कोशिशूं ऐं सूबे में अमुन ऐं इस्तेहकाम खे बरक़रार रखण लाइ खयल क़दमनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास में उभरंदड़ सिक्योरिटी चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारी ऐं जवाबी हिकमत अमलीअ जो पिण जाइज़ो वरितो वियो। वॾे वज़ीर पारां लाॻापियल इदारनि खे अवाम जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण, अमुन अमान खे बरक़रार रखण ऐं रियासत जी रिट खे मज़बूत करण लाइ हिक ॿिए सां वेझे राब्ते में रहण जी हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे नायब सदर जे डी वेंस ऐं परडे॒ही वज़ीर मार्क रोबियो खे ईरान सां सफारती राब्ता ऐं ॻाल्हियुनि जारी रखण जी हिदायत। पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मिसालण जी धमकी बि ॾिनी। अमरीकी सदर चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मूंखे क़तलु करण जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मिसालण जो चई छडि॒यो आहे। फ़ौज ईरान ते 1000 मिज़ाइल फायर करण लाइ तयार आहे। तहरान खे साज़िश तां पोइ ते हटणो पवंदो।

मौत जो पलांद वठण कौम जो मुतालबो आए पूरो थियण घुर्जे। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई चयो आए त शहीद अगवाणन ऐं शहरनि जो पलांद वठण जो अहद कयूं था। परडेही वज़ीर अब्बास इराची चयो आहे त अमरीका सां मुआदो गडि॒यल बुनियादनि ते थी सघे थो। अब्बास इराची मौजूदा सूरत हाल ते ॻाल्हि लाइ ओमान पहुतल।

लाइ तयार आहे। ईरान कॾहिं बि जंग न आहे चाही, पर ज़ुल्म आॾो न झुकंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालीबाब चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान अमरीकी नायब सदर खे ॿुधायो त असांखे अमरीका ते इतमाद न आहे। तकरार ईरान जे हथियार फिटाकण सां कॾहिं बि ख़तम न थींदो। दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क जंग जे ख़ात्मे खे तरजीह ॾींदा आहिनि। अमरीका सां असरायतियूं ॻाल्हियूं उहो करे सघे थो जेको जंग लाइ बि तयार हुजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सऊदीअ जे परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान सां फोन ते राब्तो। खिते जी सूरतहाल, अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि ऐं इस्लामाबाद यादाशनामे ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि अमरीका ऐं ईरान जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻणितीअ जो इज़हार कंदे शिकतान जे ख़ात्मे लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो मालदीव जे परडे॒ही वज़ीरनि सां फोन ते राब्तो। ॿितरफ़नि लाॻापनि ऐं खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल बि कई वई।

0: बानसदा आबाद में कणक जखीरो करण खिलाफ बेड़ियों पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर की अगवाणी में जोई रोड से कायम गोदाम से छापो। कणक जो 6000 बोरियो हथ कणक सरकारी गोदाम से मुंतकिल करण दौरान वापर जिले इंतजाम के अमलदार विच में चक्रिय। कादरपुर में गरम तेल उछलाए जख्मी कल निगरी सानिया भुट्टो की हालत खराब। निगरी घोट की अस्पताल में इलाज हेठ वारस माली मुश्किल जो शिकार मुतासर खानदान जो सरकारी खर्च।
1: Change is inevitable.
2: Claim the X factor. It's time to make your next move. Pakistan's first ever XUV Suzuki.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
5: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578 6।
6: जी हां 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंजब दंदल तमाम खूबसूरत मासूमी सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामुअलैकुम। पुरखलू दुआ के समंदर चाहतों के बारे सलाजुल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे गलत सुबह से शाम तक दिन से रात नीं से जागते कमी से आसमां तक जिंदगी से मौत तक सांस दर्द कम से खुशी तक दिल से दर्द तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही प्रोग्राम व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल सही आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है जनाब जो कि हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो खूबसूरत जो है ना वो बनना चाहते हैं। खूबसूरतियां हासिल करना आजकल के दौर में कौन नहीं चाहता, तो अगर आप भी अपनी खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं खूबसूरतियां बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं तो लिसनर्स प्रेजेंटिंग The most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ, Sidra Muskan, naam to sunai hoga. So, bilkul aapki Sidra ke saath mukhatab ho chuki hai is beautiful si program mein aap logo ko beautiful banane ke liye. So, jitne bhi log hamare saath maujood hain, jitni bhi pyari pyari samate hain, sabko welcome and khush aamadeed kaha jata hai. ओके जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जरा आप अपनी हालचाल भी बताते जाइए स्टूडियो लिसनर्स अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत है। उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकून मूड के साथ सुपकून प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहां पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। तो बिल्कुल 2 घंटे हमारे पास मौजूद है जनाब और 2 घंटों में हम इतनी सारी आप लोगों के साथ बातें करने वाले हैं। तो चलिए जी बातों के भंडार को जरा खोलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां अमियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और जी आगा से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से कलाम के साथ। बहुत प्यारा खूबसूरत कलाम जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है तो हम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत होते हैं।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर। उसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। और जी आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ अगर मौजूद है तो आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ हैं और कौन कौन से समाते हैं, ये हमारे साथ जरा आप शेयर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में वाले हैं। ओके जी, तो सब कुछ बताएंगे और बहुत सारी बातें हैं जो बताने वाली, लेकिन साथ साथ सबसे पहली जो बात है वो ये कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक क्या पूछा जा रहा है उसकी जानिब आ जाते हैं। ओके जी, तो अगर आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज जो मेरा आप लोगों से टॉपिक होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, हम मूवीज में देखते हैं, मैंने रियल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी इंसान की जो ना किसी इंसान को मेमोरी लॉस हो गया हो, यानी कि उसकी याददाश्त चली गई हो, उसने सब कुछ भूल दिया, उसका मतलब जो भी उसके साथ हो वो सब कुछ भूल जा रहा हो। मैंने रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ मूवीज में हमने बहुत मार देखा। लेकिन ऐसा है कि अगर आप जो है ना, आपने कभी किसी इंसान को देखा जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, या फिर आपने भी मूवीज में देखा है, लेकिन सवाल जो है वो कुछ ऐसी से रिलेटेड होने वाला है आज के प्रोग्राम का, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है, यानी कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो आज आप मुझे जरा ये बताइए कि फिर वो अपनी लैंग्वेज कैसे जो है ना उसे याद रह जाती है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वो तो अपनी लैंग्वेज भी भूल जाए ना, मतलब एक चीज नए से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करे ना, फिर उसे अपनी लैंग्वेज क्यों याद रहती है, लैंग्वेज कैसे याद रह सकती है, ये आप जरा आज मुझे बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। ओके जी, तो फेसबुक पेज को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा जो है ना वो पेज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, चलिए जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद है। और साथ साथ बताइए अगर किसी इंसान की ना मेमोरी लॉस हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, तो फिर उसे अपनी लैंग्वेज कैसे याद रहती है और क्यों याद रहती है, ये बताइए जरा मुझे। ओके जी, सो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो उसके लिए आपने जो है ना वो डायल करना है 03-15-799-0595 315-9595। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो भाई ये कह रहे हैं कि बाजी हमारे एरिया में तो नहीं मिल रही व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट और हमारे एरिया में तो नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो आप जो है ना इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और नंबर के ऊपर रब्ता करते रहिए। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए और उन्हें जरा पोस्ट शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि खूबसूरतियां आपको कैसे मिलने वाली हैं। आजकल देखा जाए तो हर कोई जो है ना वो परेशान है खूबसूरती को लेकर, लेकिन आपकी ये परेशानियां आप दूर कर देते हैं। तो बिल्कुल जी, मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं जेकब आवाज से, खुश आमदीद कहते हैं भाईजान को। सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ मौजूद है, सरफराज सोलंगी आपको भी वेलकम करते हैं, दर्दी दिल आ चुकी है हेलो, और कहते हैं चलो चंद आ गई, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, स्वीटी को वेलकम करते हैं। और फहीम शेख कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मौलाना सलाम अदर, खुश आयो, सफा चाक चंगा भला, जी जी सब कुछ आयो चाक चंगा भला, तां बुधाए की आयो, कहती हैं जो गानो बुधाए जो भला, बिल्कुल तां की गानो बुधराईना सी। और हिदायतुल्लाह अहमद आने कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, मैं आज गया हूँ, मैं अच गया हूँ, ओके जी, बिल्कुल आज फ्री होकर क्योंकि संडे है तो आज ये सॉन्ग सुनाना साहिर अली बगा का पश्तो, चले चले बिल्कुल सबकी फरमाइशें लगाएंगे, और लेकिन गाने अच्छे अच्छे वाले बोलिएगा। और उसके अलावा दिलावर खान हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया, वासा भाई आ चुके हैं, हेलो वासा भाई, छाला तान्यो खुश आयो, اوکے جی یاسین کھنڈ بھی ہمارے ساتھ موجود کہتے شکارپور سے نیاز بھٹو شو سن رہے ہیں ویری نائس سانگ شمن علی میر علی کا سنائیے گا بالکل سنائیں گے آپ کو اور محمد زمان آ چکے ہیں ویلکم ٹو دی شو سویٹ بوا جی آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں اور عابد نوشیرو سے ہمارے ساتھ جی فیروز علی بروہی بھی ہمارے ساتھ خوش آمدید کرتے ہیں بھائیوں کو مدڑی آ چکی ہیں وعلیکم السلام پیاری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک اور اس کے علاوہ درد دل کہتی ہیں کہ زندگی کے کچھ سوالوں کے جواب دلیل سے نہیں وقت سے ملتے ہیں وقت خاموش رہ کر بھی سب کچھ واضح کر دیتا ہے کون مخلص تھا کون مطلبی کون نعمت بنا اور کون صرف ایک آزمائش وقت کا انصاف سب سے منفرد ہوتا ہے نہ ضرورت ہوتی ہے نہ دلیلوں کی وہ ہر انسان کو اشکار ہو جاتی ہے کیا بات ہے جی بہت بہترین اور آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں جی تھینک یو سو مچ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے جو سوال پوچھ رہا ہے تو وہ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں اور سوال میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں اگر ایک انسان کی
1: آپ سن رہے ہیں
2: جی ایف ایم ایم ایف ایم
1: DAFM 88 Network سندھ کی آواز
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5576।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

मेमोरी लॉस होगी तभी पता चलेगा. नहीं आपने जो इतनी मूवीज इतनी ड्रामे देखे हैं तो बताए ना क्या सीखा उनसे. हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ ही जी. वालेकुम अस्सलाम. सनाला बिरोई हमें सुन रही है. वालेकुम अस्सलाम. ठीक हुए आप बताएं आप कैसे हैं. ओके जी तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे शो तो बिल्कुल कीजिए. साथ साथ अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सर आप लोगों को बताते हैं कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना. तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है ये तो आप जानते हैं. तो बिल्कुल सही. अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है और उसके अलावा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एज की लवली क्रीम मिल रही है जो कि फेयरनेस क्रीम है. तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है अगर आप नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे. अगर आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं आप लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है लेकिन आपको फेयरनेस फार्मूला चाहिए क्रीम चाहिए तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है और व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है जिसे हर एक इंसान लगा सकता है. दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ना वो उसे तैयार इस तरह से किया गया है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है वो लगा सकता है चाहे आप बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं टीनेजर्स हैं लड़के लड़कियां अंकल आंटियां सभी इस्तेमाल करेंगे. घर का एक एक इंसान व्हाइट एज लवली क्रीम को लगा सकता है क्योंकि जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स का फार्मूला है. 30 वाइटमिन्स कैप्सूल इसके अंदर ऐड किए गए हैं और मजे की बात कि इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है. ऐसा नहीं कि अब हम इस ये जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ का ये मुझे ही पता है कि भाई मैंने कितनी बार कोशिश करा कि भाई मुझे मेरे टाइप का जो ना स्किन टाइप का सन ब्लॉक मिल जाए लेकिन कभी मिलता ही नहीं था. और ये जो चीज है हमारे पास अगर बनी बनाई चीज एक मिल जाए हमें जिससे बस हमने सिर्फ फायदा उठाना है तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है जिसके अंदर आपको सनब्लॉक की क्वालिटीज भी मिल रही हैं. क्या बात है बहुत बेहतरीन. और आप इस्तेमाल करेंगे इसे किस तरह जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं सुबह लगाएं जब आप किसी काम से जाएं कोई काम या आपका कोई जॉब करते हैं तो आपने बस अपना फेस वॉश करना है और व्हाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है. उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक नहीं प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है आप टीनेजर हैं तो टीनेजर्स की स्किन पे जो ना काफी ज्यादा एक्नीज आ जाते हैं तो एक्नीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है यानी कि इसे जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और ये आपके एक्नीज को तो खत्म करेगा ही करेगा लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं जैसे कि आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात है वो खत्म हो जाते हैं. आपके चेहरे पर अगर बहुत ज्यादा निशानात हैं या फिर जैसे आंखों के हल्के हैं या फिर रिंकल्स आ चुके हैं या फिर कोई चोट का निशान है कोई जलने का निशान है इस तरह के कोई भी निशानात अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके उन्हें जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं. लगाने के तरीकेकार भी बिल्कुल आसान है जैसे आप जो है ना अपना फेस वॉश करते हैं और हाँ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना इसे आप दिन में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे यानी कि आप सुबह में भी लगाइए और रात में भी लगाइए. जब आप सुबह उठें तो आप लगा लीजिए और जब आप सोने लगे तब भी आप लगा लीजिए लेकिन लगाने से पहले अपना जो है ना फेस वॉश लाजमी किया करें. उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन ढूंढ रहे हैं तलाश है अच्छे से साबुन की तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है और व्हाइट एज ब्यूटी सोप जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जिसके अंदर एवोकाडो है एलोवेरा है और मिल्क है. उसके अलावा अगर आप चलें सोप नहीं लगाते हैं फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं तो आपके पास व्हाइट एज का जो है ना फेस वॉश भी मौजूद है. ओके जी तो व्हाइट एज का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए है. और उसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है. और मजे की बात बताऊं तो जनाब विटामिन सी वाला जो ये व्हाइट एज का फेस वॉश है ना ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे लगाएंगे तो आप कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए. तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज का फेस वॉश या फिर सोप जो भी आपको ईजी लगता है जो भी चीज आप लगाना पसंद करते हैं बस लगाते जाइए अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और हमेशा के लिए टिप टॉप बनी रहिए और साथ साथ डायल करती रहिए 03 15
7995 ही नंबर आहे जेको तव्हांजी आसानी जे लाइ आहे. अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वाई टेस जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराइण चाहियो था त देन तव्हांखे ही नंबर डायल करणो पवंदो ऐं नंबर डायल करण खां पोइ तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते वाई टेस जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा. सो अवेलेबल करायो ऐं पंहिंजे लाइ आसानी पैदा कयो, समझो था, पंहिंजे लाइ बि पंहिंजे आस पास जे माण्हुनि जे लाइ बि. ओके, सो वाई टेस जूं एतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी. वधीक तव्हांखे ॿुधाईंदा बि रहंदासीं. और विलेज जे गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगूजा से दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा कैसी है और शेला गुल का गाना सुनाइएगा. और कहते हैं 8 दिन हो चुके हैं आज मुझे मुझ पर, नहीं नहीं, आज लास्ट टाइम आपका गाना मैंने चलाया था, कुछ शायद 1-2 दिन हुए और चले, मैं कोशिश करूंगी आज जो आपने गाने की फरमाइश करी लगाएंगे. डेडिकेशन आपकी जा रही है किसको? नजीर सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड तैयब सोलंगी के नाम. चले जी, बहुत शुक्रिया हो गया आपका. और फाह डेरी है सऊ डेरी फ्रॉम नवाबशाह, सलामती शो नाई साई तमाजो मोहब्बतों प्यारे भाज. और हमारे साथ है जी प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम असलाम. कहते सलाम पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज दीबा सहर का कोई भी सॉन्ग अपनी पसंद का प्ले कीजिएगा. ओके डन. और हमारे साथ हैं जी ये दादू खान हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हाजिर हाजिर हलायूं.

अच्छा अच्छा था जो अदा जो वापस दुनिया में आई थी तुझी जुबान केड़ी हुई मुझी जुबान त हुई पर मां कुछ गालाई थी कोन हुयस मुझे एतरो एटीट्यूड हो मां बिन सालन ताई केसा गालो ही कोन हुयो मां हाणे भी घट गालाईंदी आहियां पर बिन सालन ताई केसा गालाई ही कोन हुयो ॾिसो त लई छोकिरीअ जी अच्छा मिठो सुमरो मारे साथे मिस्त्री ओके जी फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहा हूँ प्रोग्राम लशपश है और एंजॉय कर रही हैं आपकी आवाज को प्लीज फायजा अली का गाना सुनेगा दोस्त मुमताज अली सुमरो एंड फराज अली सुमरो सजाद अली सुमरो के नाम चले मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगा दूंगी और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद से आप हमारे शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं ओके जी मोहम्मद जमान लिखते हैं टॉपिक

सलमान कह सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है. और फहीम जी कहते हैं, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं. वाह वाह. अच्छा सरफराज अली सोलंगी भाई हेलो हो गया जी आपका. यासिन खान कहते हैं कि शमन मीर अली का गाना सुनाइएगा. जी जी मैं लगाने की कोशिश करती हूँ शमन का गाना. और उसके अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे साहिर का ये तो नहीं बोला था, वो मुझे थोड़ा ऑफ सा लगा इसलिए मैंने ये वाला लगा दिया. और निदड़ी कहती है कि चापे की यादाश्त चली जाती है, जुबान तो वैसी की वैसी होती है ना, मुंह ठीक है तो जुबान भी ठीक ही हुई ना, जुबान का तो नहीं ना, जब सारी बातें सारी चीजें इंसान भूल जाता है तो उसे जुबान कैसे याद रहती है. ये भी तो है ना कि वो सडनली ऐसा हो जाए कि इंग्लिश बोलने लग जाए कि भाई क्या पता मैं इंग्लिश वाला बंदा हूं. ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक इंसान सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, उसे कुछ भी याद ना हो लेकिन वो अपनी जुबान बखूबी भूल जाता है, तो ये जरा थोड़ी बात जो है ना वो हजम नहीं हो पाती. बताइए जरा आप क्या कहेंगे इसके ऊपर. और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करें तो कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए. ऐसा ना हो कि बातों बातों में आप ये चीज भूल ही जाएंगे भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने हैं और हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है ये भी बताइए जल्दी से. अच्छा फहीम ये कौन सी मूवी देखी है भाई मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहूंगी. और ये हमारे साथ हैं जी निधि कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए कुछ भी बोल जाऊं तो इग्नोर कर देना. ओके अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, भाभी के साथ पक्की वाली दोस्ती बना लेते हैं, समझ रहे हैं. और ये जी ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पर, गजनी में आमिर खान ने दिखाया लोग कैसे भुलक्कड़ बनते हैं, फिर पीके में बताया कि जुबान सीखने के लिए किसका हाथ पकड़ के पूरी भाषा खुद में डाउनलोड कर देता है. अयो रे अयो. अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस तक पहुँचने का पूछ सकूं दया क्या घन चक्कर है, अगर उसने बताया तो यू को भी बता दूंगा. चलें ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, आप मुझे जरूर बताइएगा. और दर्दी दिल कहती है कि जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वो तस्लीम कर चुका है कि आप उसका मकाम नहीं, आपका मकाम उससे ऊंचा है. बिल्कुल जी ऐसा ही होता है. यासीन कहते हैं कि वाइट एज का सोप लेकर आया हूँ, क्या बात है जी क्या बात है, इस्तेमाल कीजिएगा. और वाइट एज की जो लवली क्रीम है ना वो भी आप ट्राई करके देखिए, वो बहुत अच्छी है, आपके घर में सभी को पसंद आ जाएगी. आपके घर में खवातीन जितनी भी है ना वो कहेंगी भाई ये आप दूसरी लेकर आए ये हमें दे दें बस. तो आप लाजमी जो है ना वाइट एज की लवली क्रीम जो है ना वो ट्राई करके देखिएगा.

انت نوات هو غريبه غريبه زي النايت هيو نو जी प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगाते जाइए खूबसूरतियां हासिल करते जाइए एम अंसारी लिखते हैं कि लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो फितरतन मिली हुई है और फितरत इंसान में ऊपर से डाउनलोड होती है अच्छा मनैया गाल हुई सही अरे एक बार बड़ोई भाई हमें सुन रहे हैं सकरिन से खुश आमदीद भाई जान फहीम कहते हैं असावट ऑलरेडी अवेलेबल आए छोकरी जाई बुधा तो कड़ो प्रोडक्ट बतू थव

0: कादरपुर में गरम तेल उछलाए जख्मी गर्ल निगरी सानिया भुट्टो की हालत खराब, निगरी कोट के अस्पताल।
1: तो क्या 10 मिनट स्किन को नहीं दे सकते? गोल्डन पर्ल लाइटनिंग अर्जेंट फेशियल वन स्टेप फॉर्मूला।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: ये अपना वाइब सेट है।
2: आप लोगों को पता चले कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को कैसे बढ़ाने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सबसे पहली बात तो

ऑप्शन है, जो कि भाई पाकिस्तान में दो तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि विटामिन ई बीट्स से तैयार किए गए हैं, तो उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आती है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये प्रोडक्ट आपको लगेगा, जो कि वाकई है और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी क्वालिटी है। अगर देखा जाए तो पैकेजिंग के हिसाब से बात करें तो पैकेजिंग भी बहुत मस्त है जनाब। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दो रातें आप लगाने वाले हैं, तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप करें और आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो बेरोनगी है वो कम कर देता है और चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश बन जाता है। आप भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितनी भी चीजें ऐड की गई हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो आप टी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर लगाइएगा और साथ में टी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल भी कीजिएगा, क्योंकि जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और उसके अलावा हाइड्रेट भी रखता है।

0: ओके दी, तो डे स्किन का फेस वॉश अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है. आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं. बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे जी. ऐसा फील होगा कि आप कोई बहुत ही महंगा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहा है. तो लास्ट ट्राई करके देखिए. और इसी के साथ साथ आपका जो कॉलिंग वाला सेगमेंट है वो जरा हम स्टार्ट करते हैं. कॉलिंग सेगमेंट में आप लोग हमें जो है ना वो ज्वाइन करते जाएंगे, और इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स भी करेंगे. और इसके अलावा आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88. सो फर्स्ट कॉलर की जाने बातें देखें कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: के रसन सगड़ा.
1: अलीजा.
0: अलीजा माशाल्लाह पहली कॉल है जो अलीजा जी लगी भैया. सो लकी. माशाल्लाह माशाल्लाह सुठी गाल आज. मतलब शुरुआत ही छोकरी जी कॉल सां थी या मतलब लगे तो लाइन छोकरी जो कॉल ही वेंदी इए
1: इंशाल्लाह इन जो छोकरी जी कॉल.
0: ओके अलीजा बुधायो छाला ताने खुश आयो.
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मां की कया तवा बुधायो की कया
0: सुग्रा. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया. प्रोग्राम बुधो पिया.
1: जी जी रोजाना बुधना
0: आयो. टॉपिक थी अलीजा छा चवंदी.
1: टॉपिक त को जे नथी
0: चवा मां. चो भला.
1: खबर ना दिमाग में कौन घुसी अगर.
0: चलो मुखे ये बुधायो तो तमा केड़ो प्रोडक्ट लगायो पया.
1: अन्य कोन लगायो सिद्रा.
0: छो मी प्रोडक्ट में कोन अवेलेबल थिया या तमा वठन कोन वया आयो.
1: अवेलेबल थी वे हुंदा उनका पा वही न आया छो त गर्मी ज्यादा
0: है. चलो चलो ठीक है. बियो बुधायो बियो छा चवंदा.
1: जो जेके भी छोकरियो बुधन पे हुन के सलाम निदा बुधेती मुसा गड शो.
0: जी जी
1: गानो बुधराजो.
0: केड़ो
1: निदा
0: के नहीं सगुआ ही बुधाए गानो केड़ो बुधंदी.
1: निदा भजी रही कमरे में.
0: शर्मीली या कुछ ज्यादा ये ना. चलो चलो ठीक है. थैंक यू सो मच अलीजा तुम प्रोग्राम में कॉल कई लाई सुठो लगन अलीजा संगाल आई. ओके सो तुम भी कॉल करी सगोदा. कॉलिंग नंबर आ है 0332-1322-88. नेक्स्ट कॉल है दिसु केरस सगर मौजूद आए. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
0: बाजी. केडो भाषा सगडा.
2: आरो सर आयाज अली भट्टो.
0: आयाज अली भट्टो किथा कॉल किया.
2: लाड़काने का.
0: लाड़काने का आयाज दा खुश आयो.
2: हेलो बेटा ता कुछ लगा तो
0: केरा. मजे में प्रोग्राम बदो पे आयाज भा.
2: हां तेरा गाता ये ब्यूटी क्रीम.
0: हां केड़ी ब्यूटी क्रीम ता लगायो.
2: रोज बदलना बाजी चौका.
0: वाह वाह वाह वाह केड़ी क्रीम हणी डिठी तव.
2: डीएस ब्यूटी क्रीम बाजी.
0: डीएस. ओके ओके डीएस ना वैसे डी स्किन नालो तस. ये न तो दुकान वो मानो के चो डी स्किन जो तो
2: डॉक्टर
0: माई जो फोटो अस न. जी जी
2: जी
0: जी बिल्कुल बुधायूं था. केड़न दोस्तन की याद कंदा.
2: मोहम्मद हसन भुट्टो. अच्छा भुट्टो सिद्दीक मांगी.
0: जी जी
2: राकेट
0: बुट. ओके थैंक यू सो मच अयाज भा तुम मोहब्बतों तुम प्रोग्राम.

0: கால்கேட். ओके जी, कॉलिंग नंबर 0333-123-2288 आप सुन रहे हैं जी व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम बाजी सिदरा छाला.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, केरे से सगडा
1: बाजी सिदरा ता जसा खुदंदर हाफे सामल अहमद भेलो मोरो खा.
0: वाह वाह वाह वाह, मोरो वाला लिसनर माशाल्लाह एला एक्टिव आए ने ये ना.
1: जी जी बाजी सिदरा ता जर हो प्रोग्राम बदाय ता जे प्रोग्राम दा भालो हालत वा है.
0: नालो तो बदायो मुझे प्रोग्राम जो जेको डेली बदनायो
1: व्हाइट एच
0: तां साबित करे छॾियो तव्हां मुंहिंजा वाकई रेग्यूलर लिसनर आहियो. तव्हां डेली प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो. अॼु जो प्रोग्राम ॿुधो था त सवाल ते तव्हांजो कहिड़ो जवाबु
1: आहे? सवाल जो जवाब कोन थो अचे.
0: चलो मूंखे ॿुधायो त कोई प्रोडक्ट लॻायो था जेकी ॿुधायां थी.
1: वाइट एच जी लवली क्रीम बसि घुराए ॾिनी आहे
0: जी.
1: बसि अचे त पोइ बसि अॼु खां वठी बसि लॻाए शुरू करणु कंदासीं, वरी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं बि.
0: चलो चलो ठीकु आहे, ॿुधाइजो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा.
1: हाफ़िज़ लक्ष्मी रमत दिलू, शाह मीरा मत दिलू, ममताज़ लुंडा, कलाम ॿुधाए जो ममताज़ मोलाई जो.
0: चलो ममताज़ मोलाई हलाईंदासीं तव्हांजे लाइ.
1: कलाम ॿुधो हलाइजो, इहो इंतज़ार मौत बराबरि हलाए यार तूं.
0: ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ प्रोग्राम में कॉल कई. तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, तव्हां शौक़ सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा, मूं छंछर ते कॉल न वरिती हुई. न शायदि छंछर ते न वरिती हुई, खमस ते बि न वरिती हुई. सो अॼु त वठणी हुई न, मूंखे कुटकी थोरी खाइणी आहे. सम्झो तानी. सो मतिलब ईअं आहे त ॻाल्हियूं लाज़मी वठणियूं हूंदियूं आहिनि. सो कॉलिंग नंबर आहे 0333-123-2288. नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था केरु असां सां कॉलर मौजूदु आहे. हैलो, वालेकुम असलाम दुआ. हाणे ॾिसो मां दुआ खे सुञाणे वञा थी, ईअं न? दुआ छा हाल, ख़ुशि आहियो? अलहमदिल्ला. तबियत में भला मज़ो न आहे छा? अॼु सफ़ा एनर्जी डाउन लॻी पई अथई. हा ॾिस, मां सम्झी वियसि. अच्छा दुआ ॿुधायो, प्रोग्राम ॿुधो पिया? अच्छा टॉपिक ते दुआ छा चवंदी? अलाह, इहो त ग़लति आहे
2: न?
0: चलो इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो
2: आहे?
0: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हणो पिया, रिज़ल्ट मिलियो आहे दुआ खे?
2: चलो
0: चलो, माण्हुनि खे छा चवंदा? हणो बाबा, हणो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम हणो, ईअं न? चलो ॿियो छा चवंदी दुआ? अॼु दुश्मननि खे सलाम न ॾींदी छा? तबियत डाउन आहे न लाइ. ओके ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू दुआ जी. सही आहे पोइ त. चलो दुआ जे दुश्मननि खे बि असां वेलकम चऊं था, ईअं न? ओके, थैंक यू सो मच दुआ, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. ऐं तव्हांजी तबियत ठीकु थी वेंदी जल्दी. ठीकु आहे, मौसम जो बि थोरो इशू थी सघे थो, तव्हां बर्फ़ घणी खाधी हूंदी लॻे. अच्छा कुझु ईअं बि थींदो आहे त अगरि असांखे जेको आहे न कॾहिं कॾहिं थोरी पंहिंजी तबियत बि सम्झ में न ईंदी आहे त इहो थी छा वियो आहे. ओके सो तव्हां बि, हा बिल्कुलु, तव्हांजो कॉल्स अचनि थियूं और कॉलिंग नंबर आहे 0333-123-2288. जल्दी जल्दी कॉल कयो. अच्छा मैं जरा खो गई थी आगे कॉमेंट्स की जाने. ओके सो ये कॉल हम देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी. हेलो, इतना भाई सन्नाटा क्यों है? ओके सो नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है. हेलो जी. वालेकुम अस्सलाम.
3: अहमद.

0: मंसारी।
1: ए मंसारी
0: जी जी।
1: अच्छा मतलब मुझे कन्नन थोड़ो प्रोसेस कयो बुद्धि मां सही ॿुधांदी या न
0: मुझे पीर साईं आमिर खान जो जेको आनंद दुरुद लॻी वियो।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। मूंखे ॿुधायो त तव्हांजी पहिरियों दफ़ो कॉल लॻी आहे, तव्हां ख़ुशी में छा चवंदा?
0: मां ख़ुशी में कुझु ई कोन चवंदुसि, छो जो यकीन ई नथो अचे।
1: यकीन इहा ॻाल्हि आहे, मूंखे बि यकीन नथो अचे।
0: यकीन ई नथो अचे।
1: अच्छा टॉपिक ते तव्हां जवाबु ॾेई छॾियो आहे
0: जी जी।
1: ऐं तव्हां प्रोडक्ट लॻाइण जे इरादे में आयो अञा ताईं?
0: प्रोडक्ट यूज़ कयूं था।
1: कहिड़ो हणूं था?
0: पिक्चर मोकिलियूं जा।
1: हा पिक्चर किथे मोकिलींदो? अच्छा इहो बि ठीकु आहे, असां अॻिते हली सिस्टम कंदासीं त तव्हां पंहिंजा फोटोज़ बि असांखे मोकिले सघो था।
0: असां बिल्कुलु कंदासीं, अपलोड कंदासीं।
1: चलो तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया ए मंसारी?
0: इहो फ़िलहाल मां न ॿुधाईंदुमि, मां रिज़ल्ट ॾिसां किथे।
1: चलो चलो ज़बरदस्त आहे। तव्हांजो फुल फॉर्म छा आहे ए मंसारी जो?
0: अली मुर्तज़ा।
1: अली मुर्तज़ा, तव्हां नालो इलाही ख़ूबसूरत आहे माशाल्लाह।
0: कहिड़ो
1: गानो ॿुधाए छॾियो हिते हलायूं
0: था?
1: चलो ठीकु आहे, ॿियो कंहिंखे सलाम ॾींदा या बसि टाटा गुड बाए?
0: सलाम सलाम जेको आहे न सभिनी मुनाफ़िकनि खे।
1: अईली तव्हां बि दुआ वारी ॻाल्हि कई
0: आहे।
1: चलो ठीकु आहे अली मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया तव्हां कॉल कई माशाल्लाह, ऐं तव्हांजी कॉल लॻी बि वई, इहो इनखे लक चइबो अथव। ओके सो नेक्स्ट कॉल वठूं था, कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। हैलो जी अस्सलाम वालेकुम। अईली ॾिस ॾिस ॾिस दरअसल कॉलियूं डेली वठूं था त हाणे थोरो थोरो माण्हुनि खे सुञाणे वई आहियां, सो मां सुञाणो त कंहिंजी कॉल आई पर भॼी वई। चलो ठीकु आहे ओके सो हिते टाइम बि थियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां मोटींदासीं। तव्हां करे न वञो, इते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटावां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हणो ऐं सोणा थियो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: Yeah!

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ मौजूद है आपकी सिद्रा और आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताया जाता है। तो पहले आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना चाहिए ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट जो है वो कैसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी खास बात ये है क्योंकि ये जो है ना वो उन लोगों के लिए भी है। ज्यादातर मैं उन लोगों को हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमें कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं, तो उनके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है क्योंकि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है। और डॉक्टर्स यानी कि जो भी चीज आप लोगों को बता दें तो आंखें बंद करके आप यकीन कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी। और खूबसूरती में जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके चेहरे पर जो है ना वो कोई भी निशानात हो या फिर इस तरह का सीन बन चुका है कि आपके लोगों की स्किन जो है वो काफी ज्यादा डल हो चुकी है, आपकी स्किन काफी जो है ना वो ऐसी रूखी सूखी सी लगती है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 दिनों में आप इस्तेमाल करके वाजे जो इसके नतीजे देख सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है ना जदीद अज्जा शामिल है, जैसे कि अल्फा आर्बुटीन है और जनाब उसके अलावा कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है और उसके अलावा वाइटामिन ई बीड्स है और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर एड की गई है तभी जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए बन गई है। तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करके देखिए, स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। और ये बात है कि अगर लोग जो है ना ये ना समझ लें कि भाई ये अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है तो सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए है, तो ऐसा भी नहीं है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव लोगों को ज्यादा मैं हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि उनको भी पता हो कि भाई हमारे लिए भी फाइनली कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं और उसके साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, और फेस वॉश भी आप लाजमी परचेज कीजिएगा। ऐसा ही कि आप फेस वॉश लगाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। और फेस वॉश की अगर बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आप भी कोई अच्छा और कोई प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है। और डी स्किन का फेस वॉश वाकई बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई करके देखिएगा। इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में हैं और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी जरा बताते हैं जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। तो आज के प्रोग्राम का मैंने आप लोगों से सवाल कुछ यूं पूछा था कि आप मुझे बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाता है, काफी लोगों की जो है ना वो याददाश्त चली जाती है, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, फिर उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है। ये बात थोड़ी सी जो है ना वो सोचने वाली है, जिसके ऊपर आज हम तबसरा कर रहे थे। और अगर आप हमारे साथ मौजूद है, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे। तो फेसबुक वाले लोग जो है पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, भाई आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को मेंशन करें ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं। ओके जी, अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि हम कहां से जाकर परचेज करेंगे, प्राइस वगैरह क्या है प्रोडक्ट की, या फिर कुछ भी अगर आपको ऐसा डाउट है जैसे आप समझते हैं कि अगर ये बात हमें सिद्रा से नहीं पता चल रही, तो आप वो पूछ सकते हैं। जो नंबर आपको अभी बता रही हूँ उसके ऊपर आप रब्ता कीजिए, उनसे मजीद मालूम आप ले सकते हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हैं। तो कॉलिंग नंबर है जनाब 03, कॉलिंग नहीं बल्कि हेल्पलाइन नंबर है 03-15-799-0595, बुढ़ी 315-79-595।

गए थे, कुछ लोगों के कॉमेंट्स ऊपर चले गए होंगे, तो जिनको लगता है कि ये मेरा कॉमेंट नहीं अभी तक पढ़ा तो वो जरा दोबारा मुझे शेयर कीजिए. फरहान अली मीरानी हमारे साथ, फरहान अली मीरानी कहते हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू जी, आपको खुश आमदीद करते हैं.

ओके जी, सो किशोर भाई कहते हैं कि जब हम 2-3 साल के होते हैं तब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी जबान क्या है, हम सिंधी हैं या उर्दू स्पीकिंग है? ये एक नेचुरली सामने वाले को बोलता देकर ऑटोमेटिक हमारी जबान वही बोलती है, समझ गई या अगली भी गई? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गई जो आप कहना चाहते हैं। इसे दरअसल शेडोविंग कहते हैं, जो हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि उसको जो है ना वो मसल मेमोरी जो है ना वो फिट कर देती है। तो सही बात है। इसका थोड़ा सा टेक्निकल जवाब हो सकता है, लेकिन अगर हम फन में लें तो सही है। समझ गए होंगे।

अच्छा, और ये है जी फरहान अली मीरानी, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. और फहीम कहते हैं हमने व्हाइट एज लवली क्रीम लगा ले ली, अच्छा, और एक फेस वॉश सर खाली जूने जो को भेजा है, चले जी जबरदस्त हो गया. और उनका अलावा है जी मूसा एम के कोरी, कहते हैं सलाम जी, वालेकुम असलाम. आमिर अली हमारे साथ हैं, आमिर अली बलोच फ्रॉम कंबर. जी सो आपको भी वेलकम करते हैं आमिर अली, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच. अच्छा दीदार अली बिरोही भाई हैं, कहते विलेज खान मोहम्मद बिरोही से प्लीज प्ले सॉन्ग बिरोही. ओके आई विल ट्राई. शफकत अली खान हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं.

जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रही हूँ। और हिदायतुल्ला कहते हैं कि तव्हांजे प्रोग्राम में अचण जी आदत जो आ सिर वञे या आदत वञे वञे नन्ना बाबा बई चीजू हुजनि सलामत और लियाकत।

जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने सुना। एक और ब्यूटीफुल गाना हमारी लिस्ट में है सुना, जो कि ओएसटी होने वाला है। ओके जी, तो ये भी सुनेंगे और साथ साथ हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग, हाय हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अर्दी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ता भाई आपको वेलकम करते हैं। चाचा खालिद आ चुके हैं, कहते हैं बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, सॉन्ग की रिक्वेस्ट है प्लीज। अच्छा चले, टाइम बच गया तो लगाते, नहीं तो हम 5 बजे वाली प्रोग्राम में सुन लेंगे। और नदीम अली शेख है, मुंतजर मुतहिर शेख फ्रॉम विलेज भीरू, आप ही सिदरा। अच्छा अहमद मुगल के गाने की आपने फरमाइश कर दी है, कहते हैं हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और अल्ताफ हुसैन राहे जो है नवाब शाह, सिदरा बाजी आप कैसी हैं, शो तो आपका वेरी नाइस है। बाजी बलोची गाना प्ले कर जो, डेडिकेट सदाम राहे जो, सजाद राहे जो एंड आपको, बहुत शुक्रिया जी। और मेरे पर खास अब्दुल्ला बहरे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अब्दुल्ला महर भी कहते हैं कि मैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाता हूं, तो बिल्कुल जी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाते रहिए और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करें। अच्छा वैसे जो हम कॉल्स लेते हैं ना, तो कुछ भाई लोग कॉल पर आते हैं जो कहते हैं कि भाई डी एस क्रीम, अब ये है कि इसका नाम डी एस नहीं है, जब आप दुकान पर जाते हैं ना, आप लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट का नाम नहीं होता ना पता, तो दुकानदार समझता है कि इसको उल्लू बनाना तो बहुत आसान है, तो वो आपको उल्लू बना देता है। ऐसा मत किया करें, आपको प्रोडक्ट का नाम सही से पता होना चाहिए, डी एस नहीं है, डी स्किन है। और वो कहते हैं ना नकालों से होशियार है। तो बिल्कुल वैसे ही, अगर आप मार्केट जाएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करें, ठीक है, नाम आपको आना चाहिए।

पता नहीं चला क्या इश्क है इश्क है ये तो सुन लिया। अच्छा जी, और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको भी। और उन्होंने कहा

अलावा उन खां अलावा ए मन सारी कहते नॉट प्रिपेयर फॉर कॉलिंग. लग गई कैसे मैं इस शौक में शॉक हूँ. ऐसे ही होता है, अच्छी चीजें जिंदगी में से सडनली आ जाती हैं, फिर इंसान जो है ना वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया. लेकिन अब आप ऐसे ही कोशिश करते नहीं, आपकी कॉल लगती रहेगी.

0: इतनी बुरी मौत अल्लाह बचाए. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट एज के लगा रहे हैं या फिर डी स्किन के लगा रहे हैं. और साथ साथ अनवर भाई कहते हैं कि चांद से तो नहीं अलबत्ता सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो वो सच में आपके चेहरे का नूर चुरा लेगा. बिल्कुल जी, ये हकीकत बात करी अनवर भाई ने, तो जरूर पर्दा कीजिए. और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं.
1: जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, हम के झूठे थे जो सांसों की जगह चलते रहे.

यानी कि हमने ये गाना सुना था, उस गाने से हमने ये सीखा कि यार की गली में मर जाना इश्क है, अगर आप यार की गली में नहीं मरते तो वो इश्क नहीं है। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अली हसन हमारे साथ ही फ्रॉम कोयटा कहते हैं, दुआ आदाब सलाम खुश आमदीद, वेलकम शो इज नाइस और गुड आफ्टरनून। खुश आमदीद अली हसन, आपको वेलकम करते हैं। और अनवर भाई कहते हैं, जो प्रोग्राम न पया बुद्धि सगूं। अच्छा तमावट थोड़ा नेटवर्क जो इशू हुआ, चलें कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपको हम वेलकम कर देते हैं। आतिफ असलम का गाना आ चुका है जी लिस्ट में, और ये गाना हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक भी होने वाला है। और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद कहते हैं, थैंक यू जी चाचा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, मजे में हैं और कहाँ बिजी थे। बिलाल कहते हैं कि पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, अब उनका भी काम करने को दिल नहीं करता। यस, इसे कहते हैं चेंजिंग, तब्दीली। हर इंसान को अपनी जिंदगी में चेंजिंग लानी चाहिए।

राजा चाचा खालिद, आपने टॉपिक के ऊपर जवाब दिया है, इसे ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं मैंने AI यूज नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। और दर्द दिल कहती है कि कहाँ से लाती हो ऐसा टॉपिक चंदा, दिमाग का दही बना दिया तुमने, सच बताओ। और उसका सही है। ताइम अंसारी कहते हैं बेनजीर हिरा सनोबर भी चुपके से यू को सुन रही हैं। बेनजीर हिरा और सनोबर सबको वेलकम कहते हैं। ओ ये तो गुन्ना लिसनर है।

होंगे जनाब सुट्री स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये भी बता दिया करें। निदली कहती है यस मैं भी ट्राई कर रही थी, मैं नहीं कर सकती, क्या तुम कर सकती हो? बिल्कुल जी। अच्छा बिलाल लगते हैं कि कुछ लोग और कुछ चीजें हमारी नहीं होती, हम सिर्फ कुछ अरसा उनके साथ चल रहे होते हैं, फिर एक दिन जिंदगी आकर कहती है अब वापस

भी हमारे साथ हैं, खुश आमदीद। और यामीन केरियो है, यामीन केरियो है सऊदी अरबिया से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा फहीम कहते हैं जब मेरी कॉल लगेगी मुझे डर है आप मुझे कंफ्यूज ना करते। नहीं, मैं तो अगले इंसान को काम रखने की कोशिश करती हूँ। और नजीर लाया हमारे साथ मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद।

सुन तो लेना, पहले सुन तो ले। हाँ जी, तो टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि हम अब जाने लगे हैं। ओगरी सो वरी इंशाल्लाह तमासा मुलाकात मुझी थींदी पंजे बजे वारी प्रोग्राम में। तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिएगा और जाते जाते जरूर कह के जाऊंगी कि आप सब लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप लाजमी ट्राई करके देखें। अगर आपको मजा ना आए तो बताइएगा, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए। और जी नोरी भी हमारा शो सुन रही है, क्या बात है, नोरी को तो मैं भूल ही गई थी। ओके सवरी 5 बजे वाली प्रोग्राम में मिलूं था पांचो ओ सरो ख्याल रखना कि ठीक है गलती थी मुझे तो माजरत कहूं था जिंजा गाना रेजी वयान मैसेजेस रेजी वयान कुछ भी रेजी वया तो नला माजरत कहूं था। सो मुकलानी ना ही बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: स्वामी ना बाजी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तई बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहंदो। अमरीकी फौज के ताजन हमलन बाद पासदान इनकलाब अपने हुरमज बंद कर छो। ईरानी फौज बिना इजाजत के गुजरण से साइप्रस की बहरी जहाज के नाकारा बनाए छो। रद्द अमल में अमरीकी फौज जा ईरान के साहली इलाके असलविया ए बौशर से फिजाई हमला। सेंटकॉम चवाए साइप्रस के जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान से हमला कया व्या। ईरान जो टियों मरेलो मुकम्मल थी पाया। हमलन में 100 तौर से 300 हंधन के निशानों बनाया। ईरान ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी जवाबी कार्रवाई जारी। खिते में मौजूद अमरीकी फौज अड्डन से हमला। पासदान इनकलाब पारा उर्दन के प्रिंस हसन एयरवेज से वे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करण की दावा। बहरीन कतर की राजधानी में भी धमाकन का आवाज बुधा व्या। पासदान इनकलाब दावा कई तो ओमान के दकुम बंदरगाह से अमरीकी लॉजिस्टिक ए तेल फराम कदर मरकजन के निशानों बनाया है। यूएई के दिफा वाले वजीर मुल्क के दिफाई निजाम ईरान तरफा इंदड़ मिजाइल्स एंड ड्रोन जो मुकाबलो कर रहा है।

ईरान ऐं अमरीका छिकताण घटाइण सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची विच सां फोन राब्तो। ॿिन्ही अॻवान पारां विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसहाक़ डार चयो त ख़िते में अमन इस्तिहकाम लाइ सफ़ारतकारी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही परडे॒ही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जी इतफ़ाक़।

ईरान खे पंहिंजे फैसले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते एक्स ते बयान में चयो आहे त ईरान ग़लति फ़ैसिलो कयो, हाणे खेसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेनकाम जो पैगाम बि शेयर कयो। चयो वियो हो त वाइदो पूरो कयो या वाइदे जी भञकड़ी जी क़ीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीबाफ चयो आहे त तरफ़ी वाइदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे, पंहिंजा कयल वाइदा पूरा कयो या वाइदनि जी भञकड़ी जी क़ीमत अदा कयो। हक़ीक़त तव्हांजे साम्हूं आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत में तब्दीली ऐं नवनि चेहरनि जी आमद जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ काबीना में तब्दीली बाबति मुशावरत मुकमल करे छॾी आहे। नवनि शामिल थींदड़ मेंबरनि खे ममलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारतुनि जी कारकर्दगी ते सवाल उथारिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमिन कंदड़ वाद न थियण सबबि गणती जो इज़हार कयो आहे। चांवर बटालू फ्रूट जी एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो बि इज़हार कयो। वफ़ाक़ी राजधानी इस्लामाबाद में तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति, ख़राब मौसम सबबि केतिरियूं उॾामूं मुतासिर। मौसमियातकार जो चवण आहे त अॼु बि इस्लामाबाद, पंजाब जा मथियनि वारनि इलाक़नि, बलूचिस्तान, केपी में कुझु हंधनि ते तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे।

0: खैरपुर में पीपल्स पार्टी पारा मरसू सिंधु नाडेसू जो उनवान हेठ रैली अगवणन जो सिंधु दरिया सिंध सुप ज़रात मैशियत है। सिंध तास मुआदे से दरिया के पानी बाबत थियल आलमी मुआदे जो एतराम किया वे। भारत मुआदे की भनकड़ी करण या सिंध के पानी से धार वहन की कोशिश कई तो पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम खेस माफ न कंदो। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में सिंध के पानी सिंधु दरिया और अवाम के आयनी हकन के तहफुज लाए जदोजहद जारी रही। सखर में मर जतोई खूनी तकरार जरगया जी फतवा अज बुधाई वेंदी। सर्किट हाउस में सखर में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम, पुलिस की वही नफरी मुकरर। बिन धुरन जहा मू चंगा मुड़ सर्किट हाउस पहुंचन शुरू थी व्या। अलीगौर खान बहर इब्राहिम खान जतोई की अगवाणी में फतवा बुधाई वेंदी। टेन मकतूलन बाबत एतराज सबब मुलतवी थियल फतवा अज जारी थियण जो इम्कान। मर जतोई तकरार में हेल तई 55 इंसानी जानू जया थी चुक।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ईरान खे पंहिंजे फैसले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते बयान में चयो त ईरान ग़लति फैसलो कयो, हाणे कंहिंसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेंटकॉम जो पैगाम बि शेयर कयो। हो त वाइदो पूरो कयो या वाइदे जी भनकड़ी जी क़ीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कारीबाद चयो त हिकतरफ़ी मुआहिदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे, पंहिंजा कयल वाइदा पूरा कयो या वाइदनि जी भनकड़ी जी क़ीमत अदा कयो, हक़ीक़त तव्हांजे साम्हूं आहे। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी, वधीक 3 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया, अंग वधीक 105 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस चवण आहे त पाक फ़ौज एफ़सी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जे गॾियल ऑपरेशन में मारिजी विया दहशतगर्दनि जो अंग वधी 7-8 थी वियो आहे। 5 जुलाई खां जारी शाबान ऑपरेशन ऐं ॿियनि ऑपरेशन में 105 दहशतगर्दनि खे जनम भीड़ो कयो वियो। आख़िरी दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत में तब्दीली ऐं नवनि चेहरनि जी आमद जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ काबीना में तब्दीली बाबति मुशावरत मुकमल करे छॾी आहे। नवनि शामिल थींदड़ मेंबरनि खे ममलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो बि इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारत जे कारकर्दगी ते सवाल उथारिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमैन कंदड़ वाद शामिल न थियण सबबि गणती जो इज़हार कयो आहे। चांवर बटालू फ्रूट्स जे एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो बि इज़हार कयो। वफ़ाक़ी राजधानी इस्लामाबाद में तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति, ख़राब मौसम सबबि केतिरियूं विदामूं मुतासिर। मौसमियात खाते जो चवण आहे त अॼु बि इस्लामाबाद, पंजाब जा मथियनि वारा इलाका, बलोचिस्तान, केपी में कुझु हंधनि ते तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे। खैरपुर में पीपल्स पार्टी पारां मरसू सिंधू नंढे सूं जे उनवान हेठि रैली। अॻवाणनि चयो त सिंधू दरिया सिंध जी सुञाणप, ज़रात ऐं मैशत आहे। सिंध तास मुआदे तहत दरिया जे पाणी बाबति थियल आलमी मुआदे जो एतराम कयो वञे। भारत मुआदे जी भञकड़ी करण या सिंध जे पाणी ते धारो हणण जी कोशिश कई त पीपल्स पार्टी ऐं सिंध जे अवाम खेसि माफ़ न कंदो। बिलावल भुटो ज़रदार जी क़यादत में सिंध जे पाणी, सिंधू दरिया ऐं अवामी जे आइनी हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ जदोजहद जारी रहंदी। सकर में मर जतोई खुनी तकरार जी जरगे जी फतवा

0: ॿुधाई वेंदी। सर्किट हाउस सकर में सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम, पुलिस जी वॾी नफ़री मुक़रर। ॿिन्ही धुरनि जा माण्हू चङा मुड़ सर्किट हाउस पहुचण शुरू थी विया। अलीगौर खान बहर ऐं इब्राहिम खान जतोई जी अॻवाणी में फतवा ॿुधाई वेंदी। टिन मक़तूलनि बाबति एतिराज़ सबब मुल्तवी थियल फतवा जारी थियण जो इम्कान। बहर जतोई तकरार में हेल ताईं 55 इंसानी जानियूं ज़ाया थी चुकियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अॼु ऐं सुभाणे किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब सिंध जे कुझु इलाक़नि में मिटी जे तूफ़ान जी बि अॻकथी करे छॾी। दादू, कंबर, शिदादकोट ज़िलनि में अॼु कुझु हंधनि ते हल्की वसकार जो इम्कान। मिटी जो तूफ़ान बि थी सघे थो। सुभाणे शिकारपुर, कश्मोर, सकर, शेजबंदराबाद, घोटकी ऐं नसुफ़रोज़ में बरसाति जो इम्कान। सामूंडी पटी वारनि इलाक़नि में हल्की बरसाति थी सघे थी। कराची में ईंदड़ 3 ॾींहनि दौरान मौसम झुड़ाली ऐं घिमिल रहंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

बांझारी शाबान ऑपरेशन ए बेन ऑपरेशन में 105 दहशतगर्दन के जनम भेड़ो कर आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तई बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रह। अमरीकी फौज के ताजन हमलन बाद पासदारन इनकलाब अपना हुरमुज बंद कर छो। ईरानी फौज बिना इजाजत से गुजरण से साइप्रस के बहरी जहाज के नाकारा बनाए छो। मध्यमल में अमरीकी फौज ईरान के साहिली इलाके असोलिया बोशहर से फजाई हमला। सेंटकॉम है साइप्रस के जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान से हमला किया गया है। ईरान से हमलन जो टियों मरहलो मुकम्मल थी है। हमलन में 140 फौजी हंधन समेत मजमू तौर 300 हंधन के निशानों बनाया गया है।

ईरान खे पंहिंजे फैसले जी कीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्सेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते चयो आहे त ईरान ग़लति फैसलो कयो, हाणे खेसि कीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेंटकॉम जो पैगाम बि शेयर कयो।

चयो हो त वाइदो पूरो कयो या वाइदे जी बजकड़ी जी कीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कारीपाफ चयो आहे त हिक तरफ़ी वाइदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे, पंहिंजा कयल वाइदा पूरा कयो या वाइदनि जी बजकड़ी जी कीमत अदा कयो। हक़ीक़त तव्हांजे साम्हूं आहे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: हाय हाय हाय।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो आज भी मातली की
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

इंसानी जानियूं गड़काईंदड़ मेहर ऐं जतोई धुरियन में खूनी तकरार जी जिंदगीअ जी फतवा जारी। मिनी तौर 18 करोड़ 51 सरदार अली कोहर मेहर ऐं डॉक्टर इब्राहिम जतोई जी निगरानी में जारी कयल फतवा में फी खून जे बहाव में 1 करोड़ 51 सरदार अली कोहर मेहर ऐं डॉक्टर इब्राहिम जतोई जी निगरानी में जारी कयल फतवा में फी खून जे बहाव में माजी वियल मेहर।

बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी, वतीक चार खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान में 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शबान ए बेन ऑपरेशन में मारिजी दहशतगर्दन जो अंक 109 थी वो। सिक्योरिटी जरियन जो चवण है सरान टंगी वे इलाके में ताजन कार्रवाई में वधिक चार खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शबान में जहनम भेड़ो कल दहशतगर्दन जो मजबूई अंग 71 थी वो। मारिजी वाल दहशतगर्दन के कब्जे में वे अंग में हथियार ए बारूदी मवाद हथ किया।

अमरीकी फौज के ताजन हमलन बाद पासारा इनकलाब अपना हरमोस बंद कर छो ईरानी फौज के बिना इजाजत के घुसण से साइपर से बेरी जहाज के नाकार बनाए छो नते अमल में अमरीकी फौज ईरान के साहिली इलाके उस्लोविया वो शहर से फजाई हमला सेंटकॉम है साइपर से जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान से हमला किया गया है। ईरान से हमलन जो टियों मरहलो मुकम्मल थी वो है। हमलन में 140 फौजी हंधन से मजमू तौर 300 हंधन के निशानों बनाए हुआ है।

0: ईरान ऐं अमरीका चिकताण कटाइण ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी बडई वज़ीर अब्बास राग़ची विच में फोन ते राब्तो, ॿिन्ही अख़बारनि पारां विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई। इसहाक डार चयो त ख़िते में अमन इस्तेहकाम लाइ सफ़ाकारी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही बडई वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। ईरान खे पंहिंजे फ़ैसिले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते चयो आहे त ईरान ग़लति फ़ैसिलो कयो, हाणे खेसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेंटकॉम जो पैगाम बि शेयर कयो।

चयो हो तो वायदो पूरो कयो या वायदे जी बजकड़ी जी कीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बकर कालिबाफ चयो आहे त हिक तरफ़ी वायदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे। पंहिंजा कयल वायदा पूरा कयो या वायदनि जी बजकड़ी जी कीमत अदा कयो, हक़ीक़त तव्हां जे साम्हूं आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत में तब्दीली ऐं नवनि चेहरनि जी आमद जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ काबीना में तब्दीली बाबति मुशावरत मुकमल करे छॾी आहे। नवनि ऐं शामिल थींदड़ मेंबरनि खे मुमलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारतनि जी कारकरदगी ते सवाल उथारिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमइन कंदड़ वात न थियण सबबि बि ॻणितीअ जो इज़हार कयो आहे। जानवर बटालू ऐं फूड्स जी एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो इज़हार बि कयो।

0: आप सुन रहे थे जी नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: ये दिल से निकली आवाज।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?

0: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6।
0: जी हा 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: अदा गोश्त मुहागो, मुर्गी मुहागी, मच्छी मुहागी, ताजू सब्जियों खाओ, सेहत बढ़ाओ, आओ

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: प्रिंट का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो जी FM 90.4
2: मातली की है,
1: सुनते रहो जी

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: मातली के

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मावाज GFM 90.4।

सिंध जे अक्सर शहरनि में पीपल्स पार्टी पारां मरसू मरसू सिंधु न ॾेसू जे उनवान हेठि रैलियूं, भारत जी आबी दहशतगर्दीअ जी सख़्त मज़म्मत। कराची, हैदराबाद, पीरपोखास, टंडोलयार, बदीन, दादू, खैरपुर ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। लाड़कानो, टंडो, मकान, जेकबाद, कनकोट, शिकारपुर, नौशर फिरोज, मिठी ऐं मीरपुर माथेलो में पीपल्स पार्टी जूं रैलियूं। उमरकोट, नवाबशाह, टट्टो, खैरपुर, पनवाकिल, मिठी ऐं ॿियनि शहरनि में बि भारतीय आबी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ रैलियूं कढियूं वयूं। अगवाणनि चयो त भारत पारां सिंध आस मुआदो हिकु तरफ़ो ख़तम करण पाणीअ जी जंग जे बराबरि आहे। भारत सिंध आस मुआदो हिकु तरफ़ो ख़तम नथो करे सघे। पाकिस्तान पंहिंजे सिंधु दरिया जी हिफ़ाज़त करण ॼाणे थो। मारका हक़ में शिकस्त खां पोइ भारत आबी जंग करण चाहे थो। मारका हक़ में भारत खे इबरतनाक शिकस्त जी सिंध आस मुआदे जे मामले में बि नाकाम थींदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर,
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।